जिन्नी तुदनु तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किना उते जिन्होंने गुरु नु तन के है आओ तन गुरु नानक दियां बख्शा प्राप्त करने वाली सर्वतमाई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला कातूरी को गाहक आयो लाद्यो काल बिरख जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी सो उर्ज पहाड़ मोहन ठगौरी सो

सबना होए दारू सबना होए दारू पापड़े धोए नानको खाने बेनती चिन्ह सच।

आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदरूप असूत अंगहीन अभंगनातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व घायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनभेख सर्वशास्त्र न जान।

के सर्वत्र भवन के सर्वत्र देश के सर्वत्र भेष के सर्वत्र राज के सर्वत्र साज के सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीन के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र बाहो के सर्वत्र देश के सर्वत्र भेष के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है।

तन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रभंज अनघन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस व्यंत अनुभव अनास तिर तुर

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कारी स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया,

0: चले ले मर्दाने तू साडे बस्तर चढ़ असी वही नदी विच इशनान कर मर्दाने ने बस्तर पकड़े हजूर वही नदी विच प्रवेश करदे हन चुभी मारदे हन पर पैरी सास संगत बाहर नहीं निकले आखो श्री बाबे ने ऐसी चुभी मारी मर्दाना बड़ा चिर उड़ीकदा रे पातशाह हुण बाहर आउंदे हन हुण पानी विचों बाहर निकलदे पर हजूर निकले मर्दाना नदी दे कंडे ते कदे इधर भज्जा जांदा है बाबा किधर गए हो कदे इधर भज्जा दिन चढ़ गया अजे भी बाबा बाहर गया प्यारी सास संगत बेबे नानकी नू जाके लोकां ने धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार वाले ने जाके कहा बेबे तेरे वीर ने वही नदी भी चुभी मारी है बाहर नहीं आया प्रेमी तो अखां विचों पानी बहा रहे जिन्हां दे अंदर गुरु नानक दा प्यार सी उन्हां दे अखां विचों तो प्यार दे आंसू जा रहे हैं पर जो लोग नुक्ताचीन सन नास्तिक सन उन्होंने कहा गुरु नानक डूब गया आखो श्री दौलत खान आली हिसाब किताब करना सी मोदी खाने का मोदी खाना गरीबा नु लुटा दिता है इस भाई जराम नू भी बड़ी उदासी पर बेबे नानकी ने कहा तुसी उदास ना हो नानकी तलवंडी तो नाल लेके आया सा नानक नो मैं ते कालू ने कहा सी जयराम इसनो किसी कम लाओ मोदी खाना ले दिता और आज पता नहीं की होया बेबे ने कहा नहीं तुसी उदास ना हो मेरा वीर कदे डूब नहीं सकता ओ तां डूबियां नूं उतारन वास्ते आया किसे महापुरुष ने लिखे चंद्रमा दी मिसाल दित्ती है गुरु दी भी चंद्रमा की करदा ते गुरु की करदा तो लिखे कालू चंद दिया नूर भरे चन्ना चन्नो सौ गुणा वध लिशकार दाए चढ़े चंद ता डूबदा तारिया नू तो ता डूबिया होया नू चंद्रमा चढ़ जाए तारिया दी लो मधम पै जांदी फिर चंद्रमा दुनिया नू रोशनी देंदा है दे मथे ते कालक लगी स्याही अपनी चन तो नहीं लेंदी तू लखां दी स्याही उतारदा है फिर उच्चा वसना अर्श दे किंगरे ते पर नीवियां ते चाती मार तो प्यारी सास संगत सारे सुल्तानपुर च बड़ा प्रोपेगंडा हो रहा है आखिरकार हजूर वही नदी दे विच भी मार के किथे पहुंचे सचखंड पहुंचे अगे नूर ही नूर है सचखंड दे दरवाजे अगे हजूर ने तकिया लखाई मोहम्मद लखाई रामचंद लखाई कृष्ण लखाई गोरख लखाई देवी देवते खड़ोते तो साहबाने थे शब्द उच्चारण कीते है जित दर लख मोहम्मदा लख ब्रह्मा विष्णु महेश लख लख राम वडीरिया लख राही लख ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर तो दर्ज नहीं है ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਲ ਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਪਾਉਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਰਸਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ
1: ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ
0: ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ

0: नानक, ए नाम दुनिया में पाए। एक ओंकार वाहिगुरु एक है, सत नाम ओदा नाम सत, करता पुरख सारी सृष्टि दा करता, निर्भव ओनू किसे दा भय नहीं, निर्वैर ओनू किसे नाल वैर नहीं, अकाल मूर्त काल तू रहत, अजूनी जूनिया तू भी रहत, स्वयंभंगो दा सुते प्रकाश है। पर ए मिलेगा किस तरह? गुर प्रसाद, गुरु दी कृपा। बाबा जी वचन कर दे सन, ए नाम प्राप्त करके हजूर दी समाधि लग, आवाज आई नानक जी की कर रहे हो, तो हजूर ने प्यार नाल कहा, जप
1: जप
0: वाहिगुरु, मैं जप रहा की।

फिर लक्षण आशा जी दीवार दर लगा के कीर्तन निष्माते उस उपरंत अरदास गुरु के हुकुम नामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की थी सी भी आई दी चाह सेवक वलो तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है पर ए भी गुरु दी प्रेरणा सी तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो एवं बेनती की थी कि कई प्रेमी कहने लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की थी सेवका नाल हित कीता है तो उन्होंने चाह दा लंगर तैयार कीता है तो हुण प्यारी साध संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार दा कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार दे कीर्तन दा भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आपां आसा राग विच लगाउंदे

बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पार, गुर कर शब्द विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन, अघन कटे सब तेरे, गुर नैन पैन गुर गुर करो, गुर नैन पैन गुर गुर करो, गुरु सत्य कव नल कहें।

konuşabildiği belli hissedilir. Guru Maharaj'ı longing present karte hain, longing pesh karte hain, ek pyaas zarurat तड़प का जिक्र करते हैं और आखते हैं मन लोचे हर मिलन को, मेरा मन परमात्मा नु मिलना लोचता है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा जदों परमात्मा नु मिलन की जीव के अंदर भुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजों ले वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजों के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गया, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसने जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि में साजन वाला है, जो उसने पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने इसको बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता हर जी पिता जो सपना का पिता माता है उसनु मिलना चाहता है और उस अवस्था दे विच मन दुनिया वालों वैरागवान हो जाता है, दुनिया वालों मन जो है वो उदास हो जाता है। भाव उसमें कोई और किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था से जाके जो जिज्ञासु है उसकी रुचि बदल गई है, उस मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मेरा मन जो है वो एक उस प्रिया नू अपने प्यारे नू ही मंगता है, होर किसी चीज के नाल ओ सैटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मन लोचे हर मिलन को। मन जो है ओ दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारां लई उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है, अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है क्यों दर्शन पाईया, किमें उस दा मैं दर्शन करां, किमें मैं उस नूं मिलां। अते प्यास इतनी गहरी हुंदी है, मैं लख विड़कते साहिबा जे बिंद बोलाईया। इसके विच ए आख्या है कि ऐ मेरे साहेब, जे मैनू एक बिंद एक पल एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवे, मैनू मिल पवे, मैनू मौका दे देवे, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लै, मैं लख विड़पते साहिबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ां हासिल कर लै, जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दवे, अपने दीदार दे दवे, अपने आप नू मिला लूं, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੈ, ਫੇਕ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਰੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਐਸਾਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਚਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੌਂਗਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਾ ਜਗਿਆਸੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਓ ਗਾਈਏ, ਦਿਲੋਂ ਗਾਈਏ।

इतना खूबसूरत जवाब देता है, कहते मन अर्प्यो। सुखमनी साहब जी महाराज ने आख्या है ना, कहते हैं

तो पहला शब्द राग जैत श्री महला नौवां ते ताल चपताल दे अंदर आप जी नूं सुनाउण दा यतन करांगे।

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. सो जो प्रैक्टिस है वो ये है टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम. इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस स्टे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस बी अवेयर ऑल द टाइम दैट आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस. अगर तुसी ओ करोगे तो तुसी अपने ट्रू सेल्फ दे नाल अपना रिश्ता गंड रहे होगे. द मोर यू डू द मोर क्लोजर यू गेट. सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावांगे उस दे विच होर भी चीजा हम जो अगले कीर्तना च विचारियां जान दियां उतना असी अपने ट्रू सेल्फ दे नजदीक पहुंचते जावांगे. उतने ही शांत हुंदे जावांगे, उतने ही ट्रैंकुल हुंदे जावांगे, उतने ही स्टिल एंड साइलेंट हुंदे जावांगे, उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी. जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी. महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है, रहे एकांत एको मन वसया आसा माहे निराशो. कहिंदे ओ सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हन ज्यादा क्योंकि अपने सेल्फ नाल रहिंदे हन. एकांत का मतलब ये नहीं कि वह कल्ले हुंदे हन, वह हुंदे हन परमात्मा दे नाल, वह हुंदे हन अपने अंदर उस जोत दे नाल. जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलूं, टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नूं डिस्टर्ब करन, उसनूं तां मुश्किल बन जांदी है अगर उसनूं अपनी उस जोत नालों टुट के होर किसे दे नाल कुछ बैठना पै जाए. सो रहे एकांत एको मन वसिया आसा माहे निराशो, उसकी यह अवस्था हो जाती है. गुरु चुप की खिमा नंद साहब का पाठ सारे राम.

तेरी कृपा मोहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया दी लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचो। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू ऐसे राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो, इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओहदा नाम है, इह ओहनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी इह मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शिया दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए, ऐसी मंग

इन्हें खुश, यदि मन च ख्याल आ गया, पहले फुरना नहीं आया, हूं आ गया, सतगुर खुश बड़े आ, जे कि घोड़ा ही दे देने, जे घोड़ा ही दे देना। महाराज ने जेड़ा आसन छड़िया सी मुड़ के फिर उत्थे बैठ गया, जहां भोग पिया जनी इनाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुख जले केती छुट्टी नाल। ते महाराज कहन लगे, भाई गोपाल तू जत पहारा तक पाठ सुनाया, जत पहारा मन टिके विच पाठ होवे ते गुरु सुनदा जे, घोड़ा मंगवा के दे दिता। ते सिखा पूछा, महाराज जी आसन छड़न लग पे सी, गल की सी? ते गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे, जे ए सुना दिंदा ना, जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, उसे अवस्था च सुना दिंदा ना पाठ, ते मेरे मन च ख्याल आया सी मैनूं होर की देना, तख्त ते बिठाल के नमस्कार कर देवांगे भी हुण तू गुरु होयो। ये जपजी साहब दे पाठ दी बरकत आ, मन बेचे सतगुर के पास, जिस सेवक के कार जरास, सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अखीर दे महाराज कहते, अपनी कृपा जिस आप करे, ये तो आप कृपा करे, ये दाता भी उसे मिल सकती हैं, सब आखो सातन, ये तो आप मेहर करे, संगत भी उसे मिलती है, जीते मेहर करे, अपनी कृपा जस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, ऐसा वचन। आओ इन तुकां सारे पढ़ो, कोई रचना खाली ना रवे, फिर कीर्तन की आप समाप्ति करना।

सुतदारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पन सुन्यो गुरु संगत तै मिलंत जम त्रास मिटाई।

पुकार, गावे राजे राणियां बोले आल पतार, लटकिया के मुंदड़े लटकिया के हार, जितन पाई नानका सेतन होवे छार।

0: सबको नमें आपको परको नमें को धरता राजू तोलिए नमें सुगरा हो अपराधी दूणा नमें जो अंता मिर्गा शीस नवाये क्या थिए जार दे कुसुधे जाए
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजुस बुगुल समादंग मुखचूट विभुखन सारंग त्रैपाल त्याल विचारंग गलमाला तिलक लिलाटंग दो दोती बस्तर कपाटंग जय जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निचो कर्मं कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु बाट ना पावे पौड़ी
2: पौड़ी कपड़ो सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना

मेरी शेजड़िये आडंबर बने अवनाशी वर सुनिया प्रभ आवत सुनिया मेरी सेज सोही देख मोही गुरु के सिख दा हिरदा हिरदे दी सेजा हिरदे दा मंदर उदो जगमगा उदो शोभनीक हुंदा है जदो साहेब प्यारा इहदे हिरदे दी सेजा दे उत्ते बैठा इस नूं आप प्रतख दीदार दिंदा है जदो वसदा हिरदे दी सेजा दे उत्ते ते फिर गुरु के सिख दे रोम रोम विचों शुकराना निकलदा है।